0: or 105.4 FM Dunedin.
1: Assalamu alaikum and kia ora Dunedin.
2: You are tuned into Chit Chat with Pav, brought to you by the Pakistani Association of Otago.
1: This is your space for culture, stories and good conversation, straight from our community to yours. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं चिट चैट विद पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनम. आज की एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो शायद न्यूजीलैंड में रहने वाले हर पाकिस्तानी फैमिली के घर में कभी ना कभी ज़रूर आता है. टॉपिक है कि हमारे बच्चे उर्दू कम क्यों बोलते जा रहे हैं. आपने अपने घर में शायद ये सीन देखा होगा कि मामा और जो बाबा हैं वो उर्दू में बात कर रहे हैं और बच्चा इंग्लिश में जवाब देता है. पेरेंट्स कहते हैं बेटा उर्दू में बोला, बच्चा कहता है आई डोंट नो हाउ टू से इट इन उर्दू. और ऑनेस्टली ये बहुत नॉर्मल बात है. जब बच्चे आपके न्यूजीलैंड में स्कूल जाते हैं विच इज़ अ नेटिव कंट्री, फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, टीचर्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, होमवर्क, बुक्स, गेम्स, यूट्यूब सब कुछ इंग्लिश में है, तो इंग्लिश नेचुरली उनकी स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज बन जाती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उर्दू इम्पॉर्टेंट नहीं है. उर्दू हमारी फैमिली की लैंग्वेज है, उर्दू हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की लैंग्वेज है, उर्दू जोक्स की लैंग्वेज है, उर्दू स्टोरीज की लैंग्वेज है, उर्दू वो लैंग्वेज है जिसमें आपकी अम्मी का प्यार शामिल है, जिसमें आपके अबू की नसीहत शामिल है, आपके दादा नानी की दुआएं शामिल हैं और कभी ना कभी थोड़ी सी डांट भी शामिल है. आज के एपिसोड कोई लेक्चर नहीं है, हम बच्चों को टेस्ट भी नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ एक फ़न कॉन्वर्सेशन करेंगे. हम पूछेंगे कि इन्हें उर्दू के बारे में क्या फ़ील होता है, क्या मुश्किल लगता है, क्या फ़नी लगता है, और फिर हम कुछ गेम्स भी खेलेंगे. तो आज अगर आप घर पर सुन रहे हैं अपने बच्चों को भी साथ बिठा लें, क्योंकि आज कि एपिसोड सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है. और आज स्टूडियो में हमारे साथ कुछ बहुत ही प्यारे गेस्ट्स मौजूद हैं, जिसमें से एक गेस्ट खांस खांस के बहुत देर से खांस रहा है एक गेस्ट हमारा. लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप वन बाय वन अपना नाम, अपनी एज और एक फन फैक्ट अपने बारे में बताएं. फन फैक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका फेवरेट फूड या आपका फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट गेम और एनीथिंग, कोई फनी हैबिट, एनीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद खिरत. जी खिरत, आप अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस करा दें.
3: माय नेम इज खिरत.
1: उर्दू में, उर्दू में, उर्दू में.
3: मेरा नाम खिरत है. मैं 10 साल की हूँ. और कैन आई मिक्स इंग्लिश एंड उर्दू?
1: मिक्स कर सकते हो, लेकिन पूरा इंग्लिश में नहीं बोलना.
3: एंड आई विल टर्न 11 इन जनवरी.
1: और फन फैक्ट क्या है? ये फन फैक्ट है?
3: नो
1: नो. क्या फन फैक्ट क्या?
3: मेरा हॉबी है टू स्केच एंड यू नो मेक नॉवेल्स.
1: ओके, परीशे आप?
4: मेरा नाम परीशे खान है, मैं 10 साल की हूँ और मेरी हॉबी है टू डू पॉडकास्टिंग.
1: To do podcasting.
4: Yes, yeah.
1: Anushi? I knew this, guys. I was talking with Khirat before and I said, Khirat, देख लेना, परीशा ने भी पूरी बात कर लेनी उर्दू में, आपने भी कर लेनी, अनुषा ने कहना है क्या हो क्या रहा है दुनिया. Okay, Anushi, I'll explain it to you in English, okay? So all you need to do is introduce yourself, tell us your name, your age, but in Urdu, not in English. Can you do that? You can do it. Let's try. Mera naam.
4: Mera naam.
1: Anushe hai.

0: अनिशे है.
1: मैं 7 साल की हूँ. 7 साल की हूँ.
0: 7 साल की हूँ.
1: नॉट साठ. साठ इज 60. आर यू 60 इयर्स ओल्ड? मैं 7 साल की हूँ. मैं बहुत क्यूट हूँ. Okay, okay. That's the fun fact about Anusha. Okay, all right. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू अनुषे. शुक्रिया मीन्स थैंक यू. सो आपको मैं ये बता दूँ, एटलीस्ट ये जो दो बड़े मेरे गेस्ट हैं, आपको मैं ये बता दूँ कि कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है. ठीक है, आप अगर मिक्स करना चाहते हो लैंग्वेज में, यू कैन डू इट. अगर आप कोई वर्ड उर्दू में नहीं समझ में आ रहा तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, बिकॉज इट्स नॉट अ टेस्ट.
0: Okay.
1: We're just trying to enjoy ourselves. ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक ईजी वार्म अप गेम खेलते हैं. ठीक है, उसका नाम है उर्दू मीटर. सो अनुषा, वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम. द नेम ऑफ द गेम इज उर्दू मीटर. ओके, तो आई विल आस्क यू गाइस अ क्वेश्चन और आपने उसको 1 से लेके 10 तक नंबर देना है. ठीक है, 1 का मतलब है उर्दू बहुत मुश्किल है, उर्दू इज सुपर सुपर डिफिकल्ट, और 10 का मतलब है आई कैन डू इट, आई एम फुल कॉन्फिडेंट आई कैन डू इट. ठीक है, तो पहला सवाल, आप उर्दू समझने में कितने कॉन्फिडेंट हो, 1 या 10? Somewhere in the middle.
2: Just
0: 9.5.
1: Oh, okay. Okay.
0: Or maybe 9.
2: 9.
1: 9? Okay. What about you, Anusha? Can you easily understand Urdu? No? So then may you could be like at 3?
2: 4? 3.5.
1: 5? Yeah. And because I think Xavier is at 2 and 2.5. So you can understand me when I'm yelling at her, him or her. He understands that and he knows that Mama is angry. And but he doesn't know how to respond in English, in Urdu. He would be like, I'm a good boy. I'm a good boy. I'm like, yeah, you are a good boy. All right, next. अच्छा, तो ये हमने सीखा कि कुछ बच्चों को देखो उर्दू समझ में आती है और कुछ बच्चे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं. तो अब आपने ये बताना है कि आपको उर्दू बोलने में कितना कॉन्फिडेंस है. वेयर आर यू?
2: I'd say 9.7.
1: Okay, that's pretty confident.
0: I would say 8.8.
1: 8.8. Yeah. And Anusha? Maybe, can I answer from?
2: Let Anusha try for a bit.
1: All right, let's try. What do you think, Parisha? Where is Anusha?
0: 3. 3?
1: Yeah, I think so. Yeah, I think you're at 3. 3 is not bad. 3 is good. Okay?
0: 1 is bad.
2: Yeah.
1: 1 is bad.
2: And 2.5 is bad.
1: 2.5 is also bad. 3 is good. Next year, you're going to be at 4. 5, 6, 7, 8, 9. And then 9.7. You know where I am? I'm at 12 out of 10.
2: No, you can't do that.
1: Nah, I'm at 10. Yeah. All right. So, guys, ghar mein aap zyada Urdu bolte ho ya English?
2: I'd say Urdu, lekin I do say English. Matlab. For some words, my English bolti, like how I'm speaking right now.
0: मैं जब मम्मा को समझ नहीं आती मैं उर्दू में बोलती हूँ, और जब पापा को भी हम समझ नहीं आती मैं उर्दू बोलती हूँ. Most of the time I do Urdu, but sometimes I forget and I usually speak English, and then I also have to do Urdu because my parents won't understand that because I do it too quick. But I talk English with a new shape.
1: आई थिंक यही हमारे घर पे भी यही हो रहा है कि किरत जो है वो हमारे साथ उर्दू में बात करती है,
2: मामा के साथ
1: और जावियर के साथ इंग्लिश में, क्योंकि जावियर को उर्दू की समझ ही नहीं आती.
2: And I speak with Zavi a lot, so I'm probably in the middle.
1: और मुझे लगता है कि जावियर के उर्दू ना बोलने की एक रीजन ये भी है कि किरत उसके साथ उर्दू नहीं बोलती, क्योंकि अगर जो बच्चे हैं ना, इफ दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर इन उर्दू.

0: I try to do it with with the new shade, but then it gets frustrating because she doesn't understand.
1: Yeah, yeah, and you don't have like unlimited time.
0: Exactly.
1: Yeah, well, और भी काम करने होते हैं ज़माने में और भी दुख हैं उर्दू के सिवा है ना है ना अनुशे समझ आई मेरी बात की okay I know you understanding me आपको आप English में जवाब दे दो it's okay
0: English
1: okay that's it that's your answer English great okay so अब मुझे ये बताइए कि आपको घर में ज़्यादा कौन कहता है उर्दू बोलने को अम्मी कहती हैं नॉट आपकी मम्मा कहती हैं आपके पापा कहते हैं अम्मी कहती हैं नाना कहते हैं आशिक हाँ अपने घर में उर्दू ज़्यादा बोलने पे कौन फोकस करता है
0: well only in your house or it can be from anywhere else
1: I mean anywhere who asks you the most to talk in Urdu
0: well आप मामा और मेरी अम्मी एंड आई डोंट think like that anyone really tells me to speak Urdu that much so
1: maybe.
0: I'm gonna go for आप or अम्मी
1: अच्छा आप अनुषे आपको कौन कहता है
0: अप्रिशे
1: आप अप्रिशे को
2: सॉरी पापा कहते हैं कि
1: उर्दू में बोलो पुत्र बोलो थोड़ी सी तो सीख लो अनुषे and who tells you to speak in Urdu
0: Dada.
1: Same like Parisha. Okay. So, when they say that you talk in Urdu, then how do you feel? Do you feel like it's funny or it's annoying or it's difficult, embarrassing, yeah, normal?
0: Oh, there's a lot of coughs happening.
1: Oh my goodness! This studio.
0: I didn't hear you well.
1: I know. I didn't hear myself well because of this constant kong coming from both sides.
0: And you
1: All
0: too.
1: Right. No, not me. Did I cough?
0: No, but yeah, right. Yeah.
1: अच्छा तो अब मुझे दोबारा से मेरा question है कि जब वो कहते हैं कि उर्दू में बोलो. आपको कैसा फील होता है आपको फनी फील होता है अनोइंग फील होता है डिफिकल्ट या फिर एम्बैरेसिंग या नॉर्मल
0: मेरे घर के अंदर आई फील यू नो नॉर्मल आई फील कॉन्फिडेंट लेकिन समवेयर एल्स जैसे अभी हूँ इधर नॉर्मल
1: नॉर्मल
0: बिकॉज़ आई कैन्ट एक्सप्लेन इट
1: या
2: आई फील मुझे जब पापा कहते हैं उर्दू में बोलो मुझे होता है दैट लाइक इट्स फाइन इट्स बिकॉज ही ट्राइंग टू टीच मी टू डू उर्दू एंड लाइक ही कांट अंडरस्टैंड इट सो इफ आई विल डू इट इन उर्दू ही वुड लाइक ही कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश इट्स जस्ट लाइक एंड देन इफ आई से इट देन ही वुड अंडरस्टैंड बेटर सो या आई थिंक इट्स फाइन
0: सो नॉर्मल
2: Yeah.
1: Okay. Yeah. Anushe, how do you feel when somebody asks you to talk in Urdu? How do you feel?
0: Normal.
1: Really? Okay, Anushe, talk in Urdu, please. Is that normal? Oh my God. Seriously, everybody started? Okay. Acha, mujhe bataiye, aapko Urdu... कौन सा आपको फनी वर्ड लगता है उर्दू में टेल मी वन वर्ड दैट यू फाइंड रियली फनी दैट्स नॉट एन उर्दू वर्ड मैन ओके लेट्स स्किप इट ओके फॉर एग्जांपल मुझे लगता है अक्सर जो बच्चे होते हैं उनको बड़े सारे वर्ड्स फॉर एग्जांपल जाविया है उसको मैं बोलूँ ना चप्पल पहन लो कहता चप्पल व्हाट इज चप्पल और मैं बोलती
2: आई सी थिंक स्लैप वाज टू पेड
1: It is chapeer, but that's Punjabi.
2: Oh.
1: That's thappar in Urdu.
2: Yeah, I know.
1: Yeah. I've had all three.
2: I used to say,
1: I have had all three. I have had a slap from my mom. I have had a thappar from my mom. I have had a chapeer also. Okay. So, for example, अगर जावियर को कहती हूँ जाओ बेटा चप्पल पहन लो कहते हैं what's chappal what's chappal and then he laughs he thinks I'm just joking and for example the other day I said golgappe khayenge what golgappe what is golgappe or

0: because they don't understand each other. One day I remember I said, Xavier, you stay with at home with my mama, and I'm gonna go shopping. And he said, she does not speak my language. What would I say to her? What if I needed to go to the bathroom? What would I say to her? I'm like, yeah, that's a problem, you know. That is a big problem. अब मैं उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती किसी के साथ जिसको उर्दू में नहीं आती. तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू है. अब देखो बच्चों को जो स्पेशली जो छोटे बच्चे जैसे अनुशे और जावियार हैं या उनसे भी छोटे बच्चे हैं उनको सिर्फ क्या आता है सलाम अलैकुम अल्लाह हाफिज मैं खाना खाना है पानी पीना दैट्स इट. इसके अलावा इनको कोई बात नहीं आती उर्दू में. जावियार को बोलो जावियार को मैंने कहा मैं तुम्हें $10 दूंगी उर्दू में बात कर दो. ही सेड मेरा नाम जावियर है मैं पाकिस्तान जाऊंगा. आई सेड दैट्स इट दैट डजंट डिजर्व $10 यू विल गेट जस्ट वन. अच्छा अच्छा अब एक आप बड़ा फन वाला गेम आने वाला है वो है मैं आपको उर्दू में मैं आपको इंग्लिश में वर्ड बताऊंगी.
1: सी टोल्ड यू कफ
0: एंड आपने उसकी उर्दू में बताना है ठीक है. Pehla word. Lekin it will go one by one. Okay? So if one person cannot answer, you will not get a point. Okay? So first one. Let's start with Anushe. Water.
1: Pani.
0: Very good. You get a point. Food.
2: Khana.
0: Point. House.
1: Ghar.
0: Excellent. Book.
1: Kiki.
0: Book. You can do it. You can do it.
1: Can I give her a hint?
0: No hints. It's okay. We can go to Parishay with the book.
2: No.
1: Can I?
0: Yeah. Wait for your turn. So 1 point, okay? Parishay, book.
2: I've never said a hard book in my whole life in Urdu. It does not count.
0: 1 point. Okay, that's Urdu, book.
1: Kitab.
0: Very good. Yeah! 2 points. I think this is going to be tough. Pen.
2: I know this, but I forgot. Just like book.
0: Okay.
1: Kitab ki pen.
0: Okay, let's tell. Pen.
1: I
2: pencil.
1: I have a feeling. I know.
2: Me too. I know. I knew book, but I forgot.
1: I should know pen.
0: Can I tell?
1: No. Let's finish it. Hint.
0: It starts with a q sound. Qa. You will never tell, guys. I know you can't tell. You probably have never even heard of it.
2: I have. Just like I've heard book.
0: Main bataun abhi?
1: No.
0: Chalo phir 2 hafte wait karne ke agle show mein bata. Agle show mein bata dunga. Idhar hi baithe rehte hain. Idhar hi studio unka book kar lete hain. Bata do.
2: Kikri.
0: Kalam. I don't know. I'll never be able to tell. Kalam. अभी अपने पॉइंट्स याद रखे हैं मुझे भूल जाने हैं ठीक है. अच्छा
2: वेट आई टेक एडवांटेज ऑफ दैट आई गॉट 5 पॉइंट्स गाइस.
0: मदर
1: मामा
0: दैट काउंट्स या ओके 2 पॉइंट्स. फादर
1: अब्बा
0: वेरी गुड 2 पॉइंट्स. फ्रेंड
1: दोस्त
0: 3 पॉइंट्स गुड. स्कूल you will never be able to tell what's in school.
1: Wait, can I guess?
0: Okay, school in Urdu.
2: School is school.
1: No, it's school something else.
0: No, there's another word.
1: Wait.
0: In Urdu.
2: Well, I've never heard school in Urdu.
0: मुझे भी नहीं पता था. मुझे 2 साल पहले पता चला. मुझे पहले नहीं पता था कि स्कूल को कुछ और भी कहते. It's okay.
2: I thought you just call school just like you call jacket. That's something.
0: Jacket को भी कुछ कहते हैं.
1: Wait.
0: जैकेट को भी कुछ कहते इवन प्लेट को कुछ कहते हैं उर्दू में. प्लेट को पता क्या कहते हैं तश्तरी. ग्लास को भी कुछ कहते हैं. अब मुझे भूल गया. नहीं नहीं ग्लास को पानी थोड़ी कहते हैं. पानी तो वाटर है. अच्छा गिरत बताओ स्कूल.
1: Let me guess. Ami used to say that when mama used to when Anna used to go to school ये होता था वो होता था.
0: Can I tell?
1: Yeah.
0: Madrasa.
1: Bro, what the hell? I didn't know I couldn't guess that.
0: Yeah, madrasa. I knew you couldn't tell. Next. shoes.
2: I know this
0: I know you know.
1: This one.
0: Chappal. Very good. Chappal?
1: Wait, I thought it was jute. I thought it was jute.
0: It could be both. Chappal is also shoes. Excellent.